0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Bangla's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में सूरमा मूवी से बहुत सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM तनिषा गिल जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर ट्यूसडे का दिन जुलाई 28th कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कल का दिन कैसा गया आपका? आई होप सब बढ़िया है, हेल्थ वगैरह, ऑफिस में काम, घर में काम, सब कुछ सही चल रहा है एकदम, यही उम्मीद करती हूँ। और आज के दिन की शुरुआत एकदम फुल इस एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, क्योंकि हर रोज करनी चाहिए, आज स्पेशल है कुछ ऐसा सोच के नहीं, ओके जी। लेकिन आपको पता है शुरुआत किस चीज़ से होगी? आपके मैसेजेस से। आई ऑलरेडी गॉट ए फ्यू गुड मॉर्निंग टेक्स्ट ओवर हियर, मैं और इंतजार कर रही हूँ, तब तक आप ये सुनो क्या कमाल के गाने लाइन अप है यार।

जब दो खूबसूरत आवाजें साथ आती है ना तो ऐसे ही मैजिक होता है. पैपॉन और मोनाली ठाकुर बोथ हैव सच डिस्टिंक्ट वॉइसेस एंड डिस्टिंक्ट टेक्सचर. इतना खूबसूरत साउंड करता है यार, ब्यूटीफुल. Absolutely love this track. जब ये आया था ना मैंने इतना सुना है. वो आदत रहती है ना कि एक गाना जो पसंद आ जाए उसको रिपीट पे सुनते जाओ जब तक ये ना लगे कि भाई बहुत हो गया है. सो या इस गाने के साथ मैंने वही किया था.

This amazing track is also coming your way. और साथ में ये वाला भी आ रहा है. And all these amazing tracks are lined up for you in this hour. और फिलहाल मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का 3311 1063 पर. Stay tuned, Andrew Vindas.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो ऑलर।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: पेपॉन और मोनाली ठाकुर की आवाज में दम लगा के हैशा मूवी से मोह मोह के धागे खूबसूरत गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और नाजरी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट एंड दैट इज सो ट्रू। यू नो कल का ड्रामा या फिर कोई भी गुस्सा हो, एनीथिंग वो कैरी फॉरवर्ड करके आज में लेकर आना डजंट मेक एनी सेंस। क्यों आप ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि मैं अपना दिन बर्बाद करने वाली हूँ? आई डू दैट एट टाइम्स, पर कोशिश करती हूँ कि ना ही लेकर आऊँ, ठीक है? हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए। एंड देन वी हैव निशांत कुमार, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे टू यू माई डियर, माई फेवरेट रेडियो स्टेशन ऑल ओवर, थैंक यू सो मच। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, ही सेज हैव अ नाइस डे फुल ऑफ पीस जॉय एंड ब्लेसिंग्स, विशिंग द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, यस। एंड बिलाल जी का भी मैसेज है, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जी। संधु जी भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग जी, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, सभी का दिन एकदम बढ़िया और मस्त चकाचक जाए। आई नो हम सब थर्सडे के इंतजार में हैं, तो जल्दी आ जाएगा, नो वरीज, चिल करो, लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम, स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ये काम है वो काम है, हो जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। हम पता नहीं क्यों फिजूल का स्ट्रेस लेते रहते हैं, सो रिलैक्स करो, बढ़िया गाने चला रही हूँ मैं यहाँ पे, इन्जॉय करो, कोई बात है मुझसे आके कर लो। 3311-1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है

0: श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में मैं हूं ना मूवी से कमाल का गाना ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी हैव गॉट फ्यू मोर गुड मॉर्निंग मैसेजेस। यासीन अब्बासी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, विशिंग यू द सेम जी। फेनिल का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग जी। एंड अतुल जी ने एक फोटो भेजी है, बड़ी सुंदर सी पहाड़ों से ऐसे, यू नो व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू इट इज। गुड मॉर्निंग जी, एंजॉय दिस मॉर्निंग, इट विल नॉट कम अगेन। यस, सही बात है यार एकदम। एंड मैं बोलना भूल गई यार,
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: हाय हाय,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस।
0: गुड मॉर्निंग है जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है। देखो, हम सब डिसाइड करते हैं ना कि जैसे ही वीक स्टार्ट होता है कि इस हफ्ते में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और एवरीडे देर इज़ समथिंग एडेड इन दैट टू डू लिस्ट फॉर द वीक, राइट। एक चीज़ जो हम हमेशा ऐड करना भूल जाते हैं, वो याद दिला रही हूँ मैं खुद को, ठीक है। डू ऐड योर सेल्फ इन द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस वीक। जी हाँ, हम सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने आसपास अपने यू नो लव्ड वंस का ख्याल रखते हैं, पर खुद का ख्याल रखना कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। लगता है हाँ ठीक है, चल जाएगा, इट्स ओके, नहीं चलेगा ऐसे। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ऐड योर सेल्फ टू दैट लिस्ट, डू जस्ट वन थिंग विच यू लाइक, यू नो खुद के लिए करो, ओके। इट कैन बी एनी थिंग, मे बी अ सिंपल वर्क आफ्टर वर्क और मे बी बिफोर वर्क, आई डाउट दैट, बट यू नो अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है तो कुछ पेजेस पढ़ लो एक किताब के, इस हफ्ते में ये कंप्लीट करने वाली हूँ, ऐसा डिसाइड करो अपने दिमाग में। और इफ यू लाइक टू गो टू जिम, टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। और बहुत टाइम हो गया है किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करी जिनसे आप बहुत क्लोज फील करते हैं, जिससे आपको बहुत वॉर्मथ मिलती है। एंड यू नो देर आर पीपल इन आर लाइफ जिनसे बात करके बस लगता है ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। ये है ना मेरे साथ, यू नो दोस्त पीपल, अगर उनसे तसल्ली से बैठकर बात नहीं करी, ऐसे भागते हुए बात करें कि हाँ अच्छा, हाँ अभी ऑफिस जाना है, हाँ मुझे ये काम है, अच्छा आई विल टॉक टू यू लेटर, यही हो रहा है। या फिर यू नो अपने पार्टनर को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टेक दैट टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, उनसे बात करिए तसल्ली से, यू नो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है मेरी जान। यस, और कुछ और नहीं करना है तो अकेले साइलेंस में बैठ जाओ थोड़ी देर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, खुद के साथ बैठना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो यार, आप बात ही नहीं समझते हो, बस इग्नोर करते रहते हो, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। और सुनते रहो रेडियो 106.3 जियो बिंदास।

तनिषा वरुण जैन की आवाज में जरा हटके जरा बचके मूवी से तेरे वास्ते ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज एंड फन फैक्ट दिस मूवी हैज बीन शॉट इन इंदौर Where I am from, you're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain ab. Radio 11 presents Blackboard Stories. ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज का जो सवाल है वो राइट नाउ बहुत रेलेवेंट है बिकॉज यू नो आई कीप सेइंग कि अपना ख्याल रखा करो, स्टे हाइड्रेटेड, ईट फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है. तो वही सवाल है मेरा कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है. विच फ्रूट हैज़ दी हाइएस्ट वाटर कंटेंट, ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर बताएं या फिर कॉल कर देंगे 4444106 पर. और फिलहाल लीजिए एकदम तगड़ा फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास मेरी जान.

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर विशाल मिश्रा की आवाज में खूबसूरत. खुद को आईने में देख के बोल लेना चाहिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई आके कहेगा, ठीक है. जी हाँ, वेल मैंने आपसे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में सवाल पूछा था, उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मैसेज पढ़ते हैं. सो मुझे यहाँ पे शबी का मैसेज आया है. हाय आरजी तनीषा, गुड मॉर्निंग टू यू. आज सुबह सवेरे कैसे सुदेव कहाँ गए? एंड देन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है एंड फिर पता चला कि दिस इज नॉट शबी, ये तो भाभी जी का मैसेज है. कैसे है, क्या हाल चाल है? सो सुदेव को अब आप दोपहर 2 बजे ऑल ऑफ रिचार्ज में सुनेंगे और मुझे सुनेंगे आप सुबह सवेरे. जी हाँ, हर रोज ऐसे हमने स्वॉप कर लिया, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना लाइफ में, सो इसीलिए. और मेरा जो सवाल था ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का, रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंस ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. The question was कि कौन सा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है. तो दो जवाब है, एक यू नो टेक्निकली करेक्ट है और एक जो हम जनरली बोलते ही हैं, ठीक है. सो टेक्निकली और बॉटानिकली अगर आप जाएँ तो इट इज़ क्यूकम्बर. इट इज़ एक्चुअली अ फ्रूट विच वी ट्रीट एज अ वेजिटेबल एंड उसमें 96% वाटर होता है. और जो जनरली हमें पता है दैट इज वाटरमेलन. यस, इट हैज़ 92% ऑफ वाटर. अलॉन्ग विद दैट टमेटो में भी काफ़ी होता है. स्ट्रॉबेरी, मस्क मेलन, पीच, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ऑल दीज फ्रूट्स आर रिच विथ वाटर कंटेंट. सो ऑल आई वॉज ट्राइंग टू डू इज रिमाइंड यू कि प्लीज स्टे हाइड्रेटेड. इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, ये वाले सारे फ्रूट्स खा सकते हैं आप. और खाना जितना कम ऑयली और लाइट होना उतना बेहतर होगा, ठीक है. ध्यान रखा करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी जान. लौट करा दियो कुछ देर में, स्टे ट्यून्ड. एंड्रयू बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाए। स्मार्ट शॉपिंग करे, रिवॉर्ड पाए, ज्यादा मुस्कुराए, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: Just feel like you're home.
4: Hello to all the listeners of Radio Olive 106.3. Stay tuned.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: हंसी तो फसी मूवी से बहुत ही कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है अब. आप भी डिसाइड कर लो आप लाइक कर पा रहे हो कि नहीं इस वेदर को. सो राइट नाउ द टेम्परेचर इज 35 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 42 डिग्रीज. क्या है भाई 42 के वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है ये. और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है सो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड. ख्याल रखिए अपना, भर भर के सनस्क्रीन लगा कर जाएँ अगर कहीं जा रहे हैं तो. ठीक है मेरी जान. और एक बात याद दिलानी थी कि हम अपना ख्याल रख लेते हैं वो तो मुझे वो भी आपको याद दिलाना पड़ रहा है. राइट नाउ अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू रिमाइंड यू वन मोर थिंग विच इज़ कि अपनी कार का भी ख्याल रखा कीजिए. टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से रिश्ते मेंटेनेंस मांगते हैं ऑब्वियसली हमारा व्हीकल भी मेंटेनेंस मांगता है, डिजर्व करता है, टाइम पर डिजर्व करता है. ऐसा नहीं कि बस अब तो बुरा ही हाल हो गया अब जाते हैं. नहीं यार, जब ज़रूरत है टाइम टू टाइम वो चीज़ें करनी होती है ना. सो सेम वे टेक केयर ऑफ योर कार एंड फटाफट से जाओ वैल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड. मैं बताती हूँ रीज़न क्यों जाना चाहिए आपको वहाँ पे, क्योंकि 150 ईयर्स का ट्रस्टेड एक्सपीरियंस आपको एक्सपर्टीज़ वहाँ पे मिलेगी. जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दैट. लास्ट टाइम आपने अपनी कार की सर्विस कब कराई थी, यू नो लाइक फुल हिस्ट्री की, कब क्या चेंज करवाया था एंड व्हाट ऑल यू डिड, वो सब कुछ आपको एक डिजिटल कार पासपोर्ट में रिकॉर्डेड मिलेगा वहाँ पे. जी हाँ, दे हैव दैट सर्विस ऑल्सो एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि यू नो बार बार आपको चीज़ें ऐसे बैठ के सोचनी पड़ेगा यार मैंने लास्ट टाइम करवाया था कि नहीं करवाया था. यू नो वी फॉरगेट, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में उसकी वजह से. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है. फटाफट से कॉल करो आप 7765595 4 7765 5954. यहाँ कॉल करके बोलना कि तनिषा ने कहा था कॉल करने को, मेरी कार को थोड़ी सी यू नो सर्विसिंग की ज़रूरत है तो बताओ मेरे लिए क्या स्पेशल ऑफर है. और फिर वो आपको बताएंगे और फिर आप चौंक जाओगे. जी हाँ, अलॉन्ग विद दैट जब आप अपनी सर्विस कराने जाएंगे वहाँ पे तो आपको वैल्वोलिन की तरफ से एक बहुत कमाल का गिफ्ट भी मिलेगा. तो यार बहुत बढ़िया मौका है, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. जल्दी से कॉल करो 7765 5954 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

गैंगस्टर मूवी से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में बहुत सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा ऐप के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और भाई कतर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और साथ में उनके एक प्रोफेसर रिसर्चर ने एक बहुत ही कमाल की चीज जो है वो लेकर आई है. सो दे हैव डेवलप्ड अ ग्लूको वॉच एंड इट इज AI पावर्ड वेरेबल डिवाइस जो कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एस्टिमेट कर सकती है विदाउट प्रिकिंग योर फिंगर और विदाउट द ब्लड सैंपल एंड दैट इज सो कूल. सो दिस इज यू नो द करेक्ट यूज ऑफ AI. ये जो हम फालतू की वीडियोज बना के सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं दैट्स नॉट द पॉइंट. इट कैन डू सो मैनी अमेजिंग थिंग्स जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बना सकता है, पर नहीं, हमें ब्रेन रॉट बनाना है. सो कमिंग बैक टू द राइट यूज ऑफ AI, ये जो ग्लूको वॉच है ये आपका हार्ट रेट एनालाइज करती है, ब्लड प्रेशर एनालाइज करती है और भी कोई फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स जो होते हैं और जो डेमोग्राफिक डेटा है उसको सिलेक्ट करके ये आपको आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बताती है इन रियल टाइम. यू कैन ट्रैक इट और ये एक मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होती है एंड इट इज पेन फ्री ऑल्टरनेटिव. यू नो जो यूजुअल टेस्टिंग का तरीका है ग्लूकोज लेवल का चेक करने का उससे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है और अमेजिंग है एंड इट विल मेक एंड इम्प्रूव यू नो बेटर कर देगी और इम्प्रूव कर देगी लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग विद डायबिटीज. सो इट्स अ रियली कूल इन्वेंशन एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू नो दिस कि यू नो कतर यूनिवर्सिटी में हुआ है ये. सो कूडोज टू द इंटायर टीम एंड ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक सुनिधि चौहान की आवाज में छान के मोहल्ला फ्रॉम द मूवी एक्शन रिप्ले. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. हाँ पर एंड आई से बात करने से बात बनती है मेरी जान. वायु भी इस गाने में वही कह रहे थे, बातें करो और बातों के साथ साथ में फटाफट से जाके रजिस्टर कर दो बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है. किस चीज के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने अनाउंस कर दिए है ओपनिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट स्मॉल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ कतार. ये 13th GCC स्मॉल बिजनेस अवार्ड जो होने वाले हैं उसका पार्ट है. सो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें? स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास यू नो इनोवेटिव आइडियाज थे और यूनिक मॉडल्स थे एंड इट हैज डेवलप्ड इनटू लाइक रियली गुड बिजनेस मॉडल्स और दे शोड द एबिलिटी कि यू नो हम ग्रो कर सकते हैं, हम खुद को सस्टेन कर सकते हैं. और डेडलाइन बहुत टाइट है, दैट इज टुमारो 29th of July. टू अप्लाई आपको एक प्रेजेंटेशन भेजनी होगी, मेल करनी होगी. मेल आईडी लिख लीजिए nomination@msdf.gov.qa. देर आर अ फ्यू रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो जो आपको नॉमिनेशन फॉर्म पर भरनी होंगी आउटस्टैंडिंग स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए. एस्टैब्लिशमेंट का नेम, इकोनॉमिक सेक्टर कौन सा है आपका, और साथ में डिटेल्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट्स रोल इन एम्प्लॉइंग सिटीजन एंड उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और उसका इकोनॉमिक रोल एंड अ फ्यू मोर डिटेल्स आर ओवर देयर. सो वो फिल करना है और बस यू आर गुड टू गो. एंड इफ नॉट यू एंड यू नो somebody who deserves to be nominated for this, do let them know ki bhai deadline bahut tight hai, to fatafat se apply kar lo. So please do it and keep listening to Radio Olive. Jio Bindas.

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Dr. On Air brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Tanisha.
1: मुझे भी ट्रैवल करना है, पर फिर आप अपना बैलेंस चेक करते हो और लगता है कि नहीं घर ही बैठते हैं। तो ये ही थॉट चेंज करने के लिए आई हूँ मैं आज आपसे बात करने के लिए। यस, कतर एयरवेज एक इतना कमाल का ऑफर आपके लिए लेकर आया है कि यू वोंट फील दैट स्ट्रेस ऑन योर वॉलेट बिकॉज यू कैन सेव अप टू 25% on economy seats, 20% on premium cabins, and if you're a privileged club member, you can get additional 50% bonus avios on all classes. Yes, such a blockbuster offer it is. 30th July tak hi hai, to der mat lagao. Fatafat se jaake is offer ko avail kar lo. And you can book your tickets from Qatar Airways sales office, ya fir koi aapka travel agent hai preferred, or you can go to qatarairways.com. 10th December tak ke travel plans ke liye ye wala offer applicable hai. 30th July tak hi hai, to fatafat se jao aur book kar lo meri jaan. Aur sunte rao Radio Olive, Jio Bindas.
2: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour.
3: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
2: Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वेल्वलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Doom Title Track only on Radio 106.3 FM Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. गुड मॉर्निंग मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है मुझे. एंड अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो AI है ये इंसानों की नौकरी छीन रहा है. लाइक यू नो पीपल वर स्विचिंग टू AI bots टू डू द वर्क फास्टर एंड चीपर. लेकिन नाउ द टाइम हैज कम जब AI की जॉब वापस जा रही है ब्रो, क्योंकि जो इंसानों का काम है ना वो उन्हें ही सूट करता है. एंड बहुत सारी कंपनीज ने तो ये ऑलरेडी कर दिया है जिन्होंने अपने ह्यूमन एम्प्लॉयज़ को AI bots से एजेंट से यू नो रिप्लेस किया था. वो वापस उन्हें बुला रहे हैं कि भाई प्लीज़ आ जाओ, संभाल लो, नहीं हो पा रहा है इससे. तो वही Spotify ने भी किया है. Spotify ने 75 million AI songs जो हैं जो कि AI generated थे उन्हें रिमूव कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म से. येस इट इज़ कॉल्ड स्पैमी बाय द वे. और जो 12 मंथ का जो पीरियड था ये दिया गया था उनको नोटिस कि यू नो हुएवर हैज़ पोस्टेड और अपलोडेड AI जनरेटेड सॉन्ग्स हटा दो खुद ही, नहीं तो हम करेंगे कुछ. और कर दिया उन्होंने, जिसकी भी क्वालिटी ख़राब थी. एंड यू नो म्यूज़िक वो आपके सोल को सुकून देता है, एक कनेक्ट फील होता है जब आप वो ह्यूमन वॉइस सुनते हैं. एंड दैट ब्यूटिफुल मेलोडी विच इज़ कम्पोज बाय अ ह्यूमन बींग, ये सब मशीन करेगी तो इमोशंस और वो फीलिंग्स वो कहाँ से आएगा? पॉसिबल नहीं है ना यार. तो इसीलिए बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे.
1: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain ab. यार एज आई कीप सेइंग कि आवर बॉडी इज अ वेरी मिस्टीरियस, हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता ही नहीं है अभी. देर इज अनदर थिंग. सो अ 17 ईयर बॉय इन नेदरलैंड्स, ठीक है, उसका यू नो एक्सीडेंट और कुछ हुआ था एंड उसको नी में इंजरी थी. तो उसकी नी सर्जरी की डॉक्टर ने, नी ओके, ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है उसका. पर हाँ, मतलब वो कहा जाता है कि दिमाग घुटने में एंड ऑल, बट दैट्स जस्ट अ कहावत, कम ऑन यार. सो नी सर्जरी की उस बंदे की, उस 17 साल के लड़के की, एंड व्हेन ही वोक अप आफ्टर द सर्जरी, वो नेदरलैंड से था, वो डच बोलता था, वो भूल गया, उसको पता ही नहीं है कि उसको डच आती है. ही कैन नॉट स्पीक इन डच, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है जो कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, उसने सिर्फ स्कूल में पढ़ी है. और वो कॉन्वर्सेट भी नहीं करता था बिफोर द सर्जरी इन इंग्लिश, तो वो इतने अच्छे से कैसे बोल पा रहा था, नोबडी कुड अंडरस्टैंड. ही डिड नॉट रिमेंबर हिज पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक ही फॉरगॉट अबाउट ऑल दैट. एक दिन लगा उसको, देन ही केम बैक टू हिज सेल्फ, बट ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द नी सर्जरी. जी हाँ, और इस सिंड्रोम का एक नाम है, फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम. और आई हैव रेड अ फ्यू केसेस लाइक दिस, नॉट जस्ट दिस गाय, देयर वाज अनदर मैन जो कि यूएस से थे, उन्हें रशियन बिल्कुल नहीं आती थी, उनकी भी नी सर्जरी हुई एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग रशियन आफ्टर दैट. रैंडम. सो बेसिकली हमारे ब्रेन का कोई पार्ट किसी तरह से तो खुल जाता है एंड देन यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज फॉर अ वाइल. And this is crazy, भाई, क्या मिस्ट्री है. मतलब people are not able to understand कि क्यों exactly ये चीज होती है, but ये होती है. Crazy, right? Radio.

0: सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
3: लुलु, where the world comes to shop.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
3: Yo, yo, yo.

एवी और करण औजला की आवाज में दिन शौक फ्रॉम द मूवी दे दे प्यार दे टू ओनली ऑन रेडियो 11.06.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी ऑल फील लाइक हैविंग यू नो अ स्पा डे यू नो एवरी वंस इन अ व्हाइल लगता है ना कि थोड़ा खुद को पैम्पर करने की जरूरत है यार अभी बहुत हो गया अभी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है रिलीव हो जाएगा सेम वे आर कार ऑल्सो फील्स बाबा बट याद नहीं रहता है हमें क्योंकि हम इतने मशरूफ हो जाते हैं सो मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ ट्रीट योर कार विद द प्रीमियम केयर इट डिजर्व्स जी ऑल यू हैव टू डू इज गो टू वाल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड वहाँ पे आपको जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स मिलेंगे प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दैट यू कैन गेट स्मार्ट डिजिटल कार पासपोर्ट जिससे आपकी आगे की सारी जो सर्विसेज हैं वो एकदम हैसल फ्री हो जाएगी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कुछ भी कि यार मैंने ये कब कराया था यार मैंने वो कब चेंज करवाया था यार वो वाला पार्ट कब ठीक कराया था यू नो ऑल दीज थिंग्स वो सारी हिस्ट्री जो है आपकी सर्विसिंग की वो उस डिजिटल कार पासपोर्ट में स्टोर रहेगी सो आप वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड इट मेक्स यू नो एवरीथिंग स्मूदर फॉर यू और एक नंबर बता रही हूँ उस नंबर पे कॉल करके ये बोलेंगे कि तनीषा ने बोला था कॉल करो और पूछो कि मेरी कार को स्पा चाहिए व्हाट आर दी ऑफर्स तो कुछ बढ़िया मिलने वाला है द नंबर इज 7765595 7765595 अलॉन्ग विद दैट अगर आप वहाँ से फर्स्ट टाइम अपना जो ऑयल है वो चेंज करवाते हैं वाल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस से तो आपको एक बहुत बढ़िया तोहफा भी मिलने वाला है जी हाँ तो देर मत लगाइए जरा चेकआउट कीजिए और कॉल कीजिए 7765595 पर स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास

0: All F Short Break.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Akshay Kumar.
7: Hi, this is Anushka Sharma.
8: And I'm Ashok Vasi.
9: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Tanisha.
1: अभिजीत और अनुराधा की आवाज में चुनरी चुनरी फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन. भाई कितनी भी कॉपी बना लो ओजी तो ओजी ही रहेगा. अलग ही वाइब है इस गाने की. बिंदास मॉर्निंग्स पर तनिषा के साथ है आप. और टेक टॉक में हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं. सो देर इज दिस न्यू सेटिंग इन इंस्टाग्राम जो कि हमें पता नहीं है, हमें टर्न ऑफ कर देनी चाहिए बिकॉज इट लेट्स द एआई इन मेटा. इंस्टाग्राम में जो एआई है उस टूल को आपकी इमेजेस पिक करके उससे इंस्पिरेशन लेके इमेजेस क्रिएट करने की परमिशन देता है. सो इफ यू हैवंट टर्नड इट ऑफ फटाफट से जाओ और टर्न ऑफ कर लो उसको. यू हैव टू गो टू योर प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, वहां पर जाकर आप अलाउंस में से ऑप्ट आउट कर लो एंड देन योर पिक्चर्स विल बी सेफ. थोड़े दिन बाद कुछ नया निकल के आएगा. बहुत सारे लूप होल्स हैं बट स्टिल यू नो व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया बी वेरी वेरी केयरफुल मेरी जान. यू नो कोई भी रैंडम लिंक वगैरह आ रहा है, डू नॉट जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट. इट कैन हार्म यू इन वेज वी कांट इवन इमेजिन. और एआई पे पिक्चर्स अपलोड करने से तो बचे ही बचे मेरी जान. ठीक है एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Tanisha. Tanisha.
1: That song was just me, you know, motivating myself to move and do some exercise. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par. A very good morning to Asma. Message aaya mujhe, good morning dear Tanisha. और साथ में मैं रिमाइंड भी कराना चाहती हूँ आपको कि अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लो, बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन समथिंग रियली अमेजिंग. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज दी हैंडल फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन वी आर ऑन यूट्यूब एज वेल, स्नैपचैट, टिकटॉक, एवरीवेयर. ठीक है, तो सब जगह आपने फॉलो कर लेना है सो दैट आप कुछ भी मिस आउट ना करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं एंड इट इज़ बीइंग पोस्टेड फॉर यू, तो आप तक तो पहुंचनी चाहिए ना. ऑल्सो देर आर कॉन्टेस्ट रनिंग बाबा, सो पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, यू माइट विन समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड रियली फन. सो चेकआउट करें जो वीडियोस एंड पोस्ट हम डाल रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें पता चलना चाहिए दैट यू हैव रिसीव्ड इट. यस, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज देर राइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी, और नहीं तो व्हाट्सएप पे आ जाओ 3311106 3 पर, और यू कैन ऑल्सो कॉल 4444106 3 पर. फिलहाल सेंडिंग चल रहा है इन द वॉइस ऑफ रवि शेरगिल, जब तक है जा मूवी से, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: शान और नेहरा जोशी की आवाज में मेरा दिल फ्रॉम द मूवी सलामेश कलियन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और फिलहाल वक्त चुका है मेरे जाने का मेरी जान कल मिलते हैं सुबह और वेंसडे का दिन है 29th ऑफ जुलाई है थर्सडे आने वाला है इसी खुशी में और बढ़िया सारे गाने लेकर आऊंगी आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर आऊंगी आपने अपना तब तक ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा ऐसे मिसमिस करो ना मुझे तो आ जाना मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 3311063 या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप जी हाँ बस अपना ख्याल रखो और कुछ ही देर में कशिश आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए देन वील हैव सुदेव और फिर उसके बाद सिमरन तो पूरा दिन सॉर्टेड है और रात को मुस्कान होगी सो सब सॉर्टेड है स्ट्रेस नहीं रहना है लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम होती है अगर कुछ भी चीज़ें ऐसे हेवायर हो रही है या फिर यू नो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो रही है इट्स ओके उसका होना भी जरूरी है मेरी जान स्ट्रेस नहीं लेने का ठीक है सुनते रहिए रेडियो 106.3 एफएम जियो बिंदास मेरी जान

0: एचसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
3: होम्स आर अस। वी कंप्लीट योर होम।

0: एक अच्छा गाना बनाने की रेसिपी, कोई भी बॉलीवुड का जो है अच्छा लिरिसिस्ट उठाइए और उसकी अच्छी खासी कंपोजिशन में, उसकी अच्छी खासी लिखावट में इंग्लिश की एक लाइन डाल दीजिए जिसका गाने से कोई लेना देना नहीं है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, 106.3 रेडियो ऑलिव बर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत अपनी जारी रख रहे हैं। अब देखिए यार, मैं आ गई हूं, यू नो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसी बातें कर देती हूं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, फिर मुझे ये रियलाइज होता है कि ये कभी कभी जो है मेरे साथ हर रोज होता है, मेरी हर रोज की बात का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो भी मैं बात करती हूं दिल से करती हूं और आपके दिल तक के लिए करती हूँ। सो जल्दी से अपना फोन उठाइए, दिल से जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कुछ भी, वो मुझे भेज दीजिए 3311063 पर। फिलहाल आपके लिए बहुत अमेजिंग वाले गाने जो है वो मैं चुन चुन के लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो कोक स्टूडियो भारत का एक अमेजिंग वाला नंबर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। एंड मेरा जो सिस्टम है वो टिंग टिंग टिंग टिंग बजने लग गया है, यानी आप लोगों ने मैसेजेस जो है वो करना शुरू कर दिया है, और अगर आप नहीं हो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है तो 3311063 पर आकर फटाक से मुझे मैसेज कर दो और फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इंजॉय करो। उसके बाद जरा बात करेंगे कि आपका स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है, बाहर मौसम कैसा है, बॉलीवुड में क्या कुछ खास हो रहा है, एंड कुछ यू नो जरा हटके वाली जो खबरें वो भी मैं आपको बताऊंगी।
1: मिलता नहीं कदे यार,
0: सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: So, जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक भी हो रहे हैं 10:13. दैट इज 10:13. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: हाय रेडियो ओलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
5: शाहरुख खान,
6: आई एम नंबर 1 रेडियो
0: ओलिव. ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में एक अमेजिंग वाला रोमांटिक रोमांटिक सा ट्रैक जो है वो आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। अब देखिए यार, आज मैं जैसे ही मतलब अपने रूम के बाहर निकली, मैंने खिड़की खोली और मैंने देखा बाहर कि माहौल क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं मैं उठने में बहुत लेट तो नहीं हो गई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ का टेम्परेचर होता है, जिस हिसाब से धूप जो है वो सुबह सुबह निकल जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार 6:30-7 बजे अगर आप उठो तो आपको ऐसा एकदम धूप जो है वो आपकी आंखों पर पड़ती है। कई बार तो मैं अलार्म से नहीं उठती हूँ, मेरे रूम की जो खिड़की है उससे बहुत ज़्यादा लाइट आने लग जाती है, मैं कई बार पर्दा लगाना भूल जाती हूँ, सो उस वजह से मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी और मैंने खिड़की से बाहर देखा, मैंने देखा कि यार मौसम तो काफ़ी ऐसा सा हो रहा है, लाइट काफ़ी डिम सी लग रही है, क्या मैं शाम को उठी हूँ, क्या मैंने टाइम नहीं देखा, क्या मैं अलार्म लगाना भूल गई थी, क्या मैं ऑफिस नहीं जा पाई हूँ, मुझे ऐसे सारे जो थॉट्स हैं वो आने लग गए थे। लेकिन फिर मैंने जो है जब टाइम देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज जो है थोड़ी बदली बदली सी है, यानी आज थोड़ा सा जो है मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डल सा है, धूप उतनी तेज़ नहीं है। लेकिन ये जो था ये थोड़े टाइम का ही था, जैसे कुछ कुछ एरियाज़ में मुझे ऐसा लगा कि हाँ धूप ज़्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, सो ऐसा चलते रहने वाला है आज, पर मोस्टली सनी ही रहेगा। आज दोहा का टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का है, हाईएस्ट टेम्परेचर आज 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सो देखिए यार, सनस्क्रीन लगा के रखिए, बस मुझे ऐसा लगता है कि ये धूप एकदम कड़ाके वाली हो या ना हो, सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस हीट को बीच करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता है, तो बस एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

जिस भी इंसान को कभी स्कूल या कॉलेज में प्यार हुआ है ना, उसने ये गाना एक बार हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के जरूर सुना है। और जब वो पीक आता है ना, जब के बोलता है कैसे समझाऊं तुम्हें, उस पर सबकी आंखों से आंसू आए, या तो ऐसे जो है ना गूज़बम्प से तो आ ही जाते। हर किसी को अपना पहला प्यार याद आ जाता है ना। आ गई ना शाहरुख खान की याद। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। अब देखिए यार, काफी सारे जो है लोगों को जिनको भी पहला प्यार याद आ गया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो है वैसे तो अपनी लव लाइफ के बारे में और अपने एक्सेस के बारे में जो है ऐसे खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन विक्रांत मैसी, अभी मुसाफिर कैफ़े उनका जो है नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज़ चालू हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कहूँगी कि एक बार प्लीज़ जाकर देखो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक से इंस्पायर्ड ये जो स्टोरी है, इसे वीव किया गया है, एंड मैंने भी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों से प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ कि मुझे देखनी है, बिकॉज मैंने एक ऐसी सीरीज़ जो है वो शुरू कर दी थी जो मैं नहीं देखना चाहती हूँ, बट अब खत्म तो करनी पड़ेगी, मैं जंप नहीं कर सकती। तो मैं बस दो एपिसोड बचे हुए हैं वो उस पुरानी सीरीज के, वो मैं खत्म करूंगी, उसके बाद मुसाफिर कैफे शुरू करूंगी। तब तक मुझे बिना जो है ऐसे कुछ भी मेजर चीज बताए उसका रिव्यू अगर आप देना चाहते हो, एक्सपेक्टेशन क्या रखूं मैं वो बताना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर। अब बैक टू न्यूज की, मैं आपको क्या बताने वाली थी और हमें पहले प्यार की याद आई है तो मैं उससे क्या जो है ऐसे मैच करने वाली हूँ। सो विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उनकी वाइफ और वो कभी भी अपने एक्स को जो है मैसेज नहीं करते हैं या उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट बिल्ड करके रख सकें एंड यू नो म्यूचुअली एक दूसरे को सिक्योर फील करा के रख सकें। शादी के बहुत साल बीत चुके हैं एंड आपको जो है अपने पहले प्यार को भूले हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते कि आपका पार्टनर जो है कब इस बात से इनसिक्योर हो जाएगी, भाई ये तो ये हुआ था और यही सेम बात तो देखो मुझे बोल रहे हैं और यही सेम बात तो उसे भी बोली थी। देखो यार, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम आप एज अ पर्सन बहुत बदलते हो, आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी बदलते हैं, एंड जो है अभी जो आपका करंट पार्टनर है जिनके साथ आपने अपना जीवन बिताने का जो है वो फैसला लिया हुआ है, बेटर है कि आप उनको जो सही लगता है वो करें एंड पीछे का जितना भी है उसे वाइप ऑफ करते हुए चलें, वरना वो जो है आपको अफेक्ट करेगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने एक्सेस के साथ जो है वो बहुत ही अच्छे रिलेशन्स में होते हैं, गुड टर्म्स में होते हैं, पर आपके पार्टनर को जो है सिक्योर फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बात विक्रांत मैसी ने जो है हर बार कही है। सो देखिए यार, बस प्यार मोहब्बत की बात करते हुए जन्नत 2 से एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। आकर जरा आपको बताऊंगी अगर थोड़ा बहुत आपके जीवन में स्ट्रेस है तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं। मैं हूं आपकी कशिश, ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है ये रात, प्यासी है।

0: यार ये बरेली के बाजार को इतना जो है बदनाम क्यों करके रखा है। सैंडल जो है वो बरेली के बाजार में टूट जाता है, झुमका जो है वो बरेली के बाजार में जो है गुम जाता है, आंखें जो है वो बरेली के बाजार में जो है वो मिल जाती हैं। ये क्या हो रहा है देखिए बरेली का बाजार बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, क्या हो गया ये मुझे। खैर वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए ले आई हूँ लाइफ मस्त है। देखिए शो जो है उसका नाम लाइफ मस्त है, जहां पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है बातचीत करते हैं, काम वाम जो है वो जारी रखते हैं। अब देखिए यार मैं आपको हर रोज एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको छोटा मोटा स्ट्रेस हो तो। अब देखिए मैं आपको हर रोज आके एक नया तरीका बता तो देती हूँ, लेकिन कितनों को याद रह पाता है और कितने लोग जो है वो सेम टाइम पे कई बार कई लोगों से मिस हो जाता है ये वाला सेगमेंट। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने आइकॉनिक जो तरीके हैं जो मैंने खुद ट्राई किया है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सो हम रेट करेंगे 3, 2, 1 पे, यानी थर्ड जो है सबसे बेस्ट मुझे कौन सा तरीका लगा है। सो मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि एक तरीका होता है जहां पर आप एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे होते हैं, जहां पर आप एक सेलिब्रिटी हैं एंड आपके सामने जो है रिपोर्टर्स बैठे हैं एंड वो आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप आजकल गुस्सा बहुत करने लग गए हैं या आजकल आप अच्छे से बात नहीं करते हैं और आप शैम्पू की बॉटल पकड़ के बाथरूम में जो है प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सेलिब्रिटी, और आप उन्हें बता रहे हैं कि देखिए आजकल ना मेरा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ा हुआ है इस वजह से ऐसा है। तो आप जब ये प्रिटेंड करेंगे तो आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस माइक पर निकाल देंगे एंड अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सो ये हो गया थर्ड। सेकेंड वाला जो है जो मेरा फेवरेट है जो मैं अक्सर करती हूँ वो ये है कि आप कोई एक रैंडम स्टेटमेंट अपने दिमाग में जो है बना के रखो कि जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप ये चिल्लाओ। किसी को कुछ भी बोलने से बेहतर है, जब लोग ऑफेंड हो जाते हैं आप गुस्से में उन्हें कुछ बोल देते हो, उससे बेटर है कि आप ऐसी चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दो, जैसे मेरा समोसा कहाँ है। तो अगर अब आपको कभी भी गुस्सा आ रहा है सो आप जनरली आप अकेले रूम में जाइए एंड जो है रैंडम चीज़ों से पूछिए मेरा समोसा कहाँ है, मेरा समोसा कहाँ है। इससे क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। यस और अब जो फर्स्ट है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये तरीका स्ट्रेस कम करने का, वो है म्यूज़िक सुनना। सो जितना ज़्यादा हाई मतलब पिच वाला गाना होगा, जितना ज़्यादा बढ़िया डांस नंबर होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका स्ट्रेस कम होगा। देखिए अगर आप सैड हैं और आप सैड गाने सुनेंगे तो आप और सैड होते जाएंगे, इसीलिए बेटर है कि जिस भी चीज़ से आप रिलेट कर रहे हैं रिलेटेबिलिटी वाला गाना बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है। रैंडम कोई भी गाना जो है वो उठाना, और अगर अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो यार इस पे टेंशन की क्या बात है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए गाना लेकर आ गई, तो वॉल्यूम बढ़ाओ एंड एक अमेजिंग वाला गाना पति पत्नी और वो दो से आर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: Song of the Hour.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:09, दैट इज 11:09। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

भाई इस वाले गाने को सुन के अलग से समझ आया है कि अलका याग्निक जी को जो है एक अलग सीटिंग दी गई थी, उसके बाद जो है सारे लोगों को अलग अलग बिठा कर पूरा गाना समझाया गया है, म्यूजिशियंस ने जो है बहुत मेहनत करी है उसके बाद इस गाने को जो है एक शॉट में जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मेहनत करी गई है, तो काफ़ी एफर्ट्स 90s के गानों को या अर्ली 2000 के गानों को या अभी तक के बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत की जाती है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है मेरे दोस्त, अब जो है सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, उससे ही गाना बन जाता है, सिंगर जो है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एआई कहा जा रहा है कि सबकी जो है नौकरियां खाएगा, बस मेरी मम्मी कह रही है कि ये जो मैं घर पे काम करती हूँ ये एआई कब लेगा, बाकी सब कर रहा है एआई जो उसे नहीं करना चाहिए। सिंगर्स का काम जो है वो एआई कर रहा है, म्यूजिशियंस का काम एआई कर रहा है, कंपोजर का काम, लिरिसिस्ट का काम एआई कर रहा है, उसने सब कर दिया है। एंड हमें लगता है कि यार ये कंप्यूटर है, इमोशंस कहाँ से ही ला पाएगा, कितना ही अच्छा बना पाएगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो है ये आसपास पहुंच रहा है ह्यूमन क्रिएशन के। एंड ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप AI songs को अपनी लाइफ में जगह दे पा रहे हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि समय रहना के शो का जो एक गाना था ओए होए क्या सीन है, वो काफ़ी वायरल हुआ था एंड लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, एंड उसके बाद जो है उस गाने को जो है धीरे धीरे करके हर जगह पर लाना शुरू किया गया, एंड उसको जो है उन्होंने अपने शो का मेन थीम सॉन्ग जो है वो भी बना दिया है। एंड अब इस गाने को 500 मिलियन तो ज़्यादा होता है, मिलियन भी ज़्यादा होता है, लेकिन 500 मिलियन एक साथ कितना ज़्यादा होता है, इतने जो है व्यूज़ अभी तक मिल चुके हैं, इतनी बार उसे स्ट्रीम करा जा चुका है। सोचिए भाई, एक गाना जो AI से ऐसे मजाक में बना दिया गया था ताकि किसी और म्यूज़िक बैनर को जो है वो पैसे ना देना पड़े, कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए, इस वजह से जो है उन्होंने AI से गाना बनाया और वो इतना ज़्यादा हिट हो गया कि अब जो है उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। तो देखिए अब आपको क्या लगता है, फ्यूचर जो है क्या वो AI गानों का है या फिर ये सिंगर म्यूजिशियंस इनका काम जो है ये चलता रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ह्यूमन जो है वो कभी भी AI से रिप्लेस नहीं होंगे म्यूजिक के मामले में, आपको क्या लगता है बताइए आज मुझे, आज ओपिनियन इसी पे जानते हैं आपका 3311063। अब देखिए जिस वायरल गाने की हम बात कर रहे हैं अगर वो मैंने आपको नहीं सुनाया तो फिर क्या मजा आया है ना, इसीलिए 3311063 पर जरा मुझे अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। एक बार अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं कि ये वो गाना है जिसको 500 मिलियन जो है लोगों ने इतनी बार बार बार सुना है। सो एक बार ये गाना एंजॉय करके आइए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: Natural night. Do you feel alright? Wanna natural night?

अभी भी मुझे ना बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं ना समर कैंप में थी, आई थिंक केजी वन यानी किंडरगार्टन में थी मैं, एंड मैंने ना समर कैंप अटेंड किया था जहां पर इस गाने में हमें डांस सिखाया गया था। यार कितना फन था वो। कुछ लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं होगा, उन लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी सदी की बात कर रही हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो आरएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम हमारी बातचीत जो है वो जारी रख रहे हैं। अब देखिए यार, ये जो गाना अभी हमने सुना शाहरुख खान की मूवी का है, इतना आइकॉनिक है, सबने इस पे डांस किया है, लेकिन क्या आज के टाइम पे जो गाने बन रहे हैं क्या वो इतने आइकॉनिक रहेंगे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इसको याद रख पाए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि AI से जनरेट होने वाले गानों में वाइब तो होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यूजिक कैची होता है, लिरिक्स कुछ भी होते हैं तो आपको थोड़े दिन में सुनने में मजा आता है, बट आइकॉनिक नहीं है। मतलब आपके जहन में घर कर जाने वाले लिरिक्स जो है वो AI कभी लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हमेशा इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और इंस्पिरेशन जो है वो दूसरों के काम से नहीं बल्कि अपनी लाइफ से आती है। आप पेड़ों को, पौधों को, अपनी सिचुएशन को देखते हो फिर कुछ लिखते हो, और ये मुझे नहीं लगता कि AI कभी कर सकता है। अब देखिए यार, AI जो है वो आजकल ऑक्सीजन की तरह हो गया है, हर जगह AI है एंड हर जगह जो है आपको AI से होते हुए काम जो है वो दिख जाते हैं। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो आजकल बहुत सारा म्यूज़िक AI से क्रिएट हो रहा है, हर रोज़ एटलीस्ट 70 से 80 जो ट्रैक्स हैं वो रिलीज़ होते हैं इंटरनेट पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है इतने सारे गाने रिलीज़ होते हैं हर रोज़ जो AI से बने हुए होते हैं। एंड इसमें कितने हिट होते हैं कितने फ्लॉप होते हैं वो नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड अब तो ऐप्स भी आ गए जहाँ पे किसी बहुत प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लोग भी ये जो म्यूज़िक है ये क्रिएट कर सकते हैं। हम इसी पर बात कर रहे थे कि समय रैना के शो में फीचर हुआ जो गाना था जो AI से बना हुआ था, सिर्फ एक कॉपीराइट से बचने के लिए वो इतना फेमस हो गया कि उसे 500 मिलियन बार जो है देखा जा चुका है इंटरनेट पे। एंड ये तो आप नाप सकते हो, सिर्फ इसलिए ना पाए, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे कई बार स्ट्रीम किया गया है, सो और ज़्यादा ग्रैंड है ये जो गाना है। एंड अगर मैं बात करूँ जिंगल्स की, तो अब बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो अपनी प्रमोशन भी AI के गानों से ही कर रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि AI जो है वो धीरे धीरे करके म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी जो है ख़त्म करता जा रहा है? बस आज मैंने आपसे ये पूछा था। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यार कशिश, AI जो है वो क्वांटिटी दे सकता है, हमें बहुत सारे गाने एक साथ बना के दे सकता है, लेकिन क्वालिटी कैसे देगा? हमारे मन की बात कैसे कहेगा वो? कैसे वो मेरे दिल में छुपा हुआ दर्द जो है वो सबको दिखा पाएगा? किस तरीके से वो मेरे खुशी को जो है एक्सप्रेस कर पाएगा? सही बात है। तो बस एक ऐसा गाना जो आपकी खुशी को एक्सप्रेस करता है, जो आपके दिल के यू नो उस फीलिंग को जाके टच करता है, वो वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। मतलब अगर मुझे कोई अपनी बहुत प्यारी सी फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी होती है ना, तो मेरा सबसे पहला जो चॉइस होता है गाने का वो ये होता है। सो आप ही गाना इन्जॉय करके आइए, और 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे अभी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि AI जो म्यूजिक है क्या वो हमारा फ्यूचर है या फिर नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई टस से मस नहीं कर सकता।

मुझे ना हमेशा लगता था कि यार ये बॉलीवुड में कोई भी मूवी जब चल रही होती है पूरा प्रीमिस जो है वो इंडिया में सेट होता है और अचानक से एक गाना शूट करने के लिए ये लोग फटाक से कैसे पहुंच जाते हैं फॉरेन। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार जब कतर एयरवेज जो है इतने अमेजिंग जो है आपको डिस्काउंट्स देगा ऑफर्स देगा तो आप भी आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह जो है जब मन किया तब जो है आप कतर आ पाएंगे या कतर से कहीं और जा पाएंगे। यस सो कतर एयरवेज ने अपनी करंट प्रमोशन ऑफर्स के बारे में जो है एक क्लैरिफिकेशन दी है। ये ऑफर्स जो है कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। प्रीमियम केबिन्स में जो है आपको अप टू 20% तक सेविंग्स करने का मौका मिल रहा है। इकोनॉमी क्लास में अप टू 25% तक एंड प्रिविलेज क्लब मेंबर्स के लिए सारे केबिन्स में 50% बोनस एवियस ये आपको मिलने वाला है। तो देखिए यार आप इन ऑफर्स को 30th जुलाई 2026 तक जो है बुक कर सकते हैं। ये ट्रैवल के लिए अप टू 10th डिसंबर 2026 तक वैलिड रहने वाला है। इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी हैं लेकिन आप तो देखिए स्मार्ट है अमेजिंग है तो क्यों ना जल्दी से जल्दी जो है इन्हें अवेल कर लिया जाए। मैं हूँ आपकी कशिश स्टे ट्यून रही जियो बिंदास।

अरिजीत सिंह अगेन ऑन योर रेडियो सेट बाजार मूवी के इस ट्रैक के साथ आपने इन्हें एंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कसर शो, आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। जो आवर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एंड देखिए, फैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे जो है थोड़ी रिसर्च के बाद और थोड़ा इधर उधर बातचीत करने के बाद पता चला कि अगस्त में बहुत सारे लोगों का बर्थडे आ रहा है। मेरा बर्थडे आता है, सिमरन का बर्थडे आता है, तनीषा का बर्थडे आता है, एंड हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों का बर्थडे अगस्त में आता है। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सीरीज शुरू कर देनी चाहिए, बर्थडे फैशन फाइंड्स, यानी ये बर्थडे को लेकर इस वक्त क्या ट्रेंड में चल रहा है, हम इस पे जो है बीच बीच में बात करेंगे। सो हर वीक या हर तीन दिन में जो है हम एक बर्थडे फैशन ट्रेंड के बारे में जो है बात करेंगे। सो आज से हम जो है शुरू करते हैं इसको। सो अगर आपका बर्थडे भी लेट जुलाई, अगस्त या सितंबर में आ रहा है, सो ये जो ट्रेंड्स हैं आपके लिए हो सकते हैं, बिकॉज एक ट्रेंड जो है एटलीस्ट 2-3 महीने तो चलता है। सो आप जो है इन ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है, तो आप जो है वो सोचेंगे यार कि केक कैसा होना चाहिए, नॉर्मल चॉकलेट या वनीला केक हम लेकर चल जाएं? नहीं नहीं नहीं, अगर स्पेशली आपकी किसी महिला मित्र का, यानी आपकी दोस्त का बर्थडे आ रहा है जो फीमेल है, सो या आपकी बहन का, मम्मी का, या आपकी वाइफ का, गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, सो आपको ध्यान रखना है एस्थेटिक्स का। क्योंकि देखिए, केक के टेस्ट से ज़्यादा आजकल मैटर करता है कि वो केक दिखता कैसा है। एंड कुछ अलग अलग प्रकार के केक जो है वो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में है। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने खुद विशलिस्ट करके रखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इस वक्त लिली केक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कोई भी फेवरेट फ्लावर, ट्यूलिप, लिली, जो भी आपके जो भी उस इंसान को जो है आपके फेवरेट इंसान को पसंद है, उसका रियल फ्लावर जो है उस एक बेसिक केक पे जो है वो लगा होता है। केक बहुत मिनिमल होता है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता उसमें, एंड एक रियल फ्लावर का बस एक पीस जो है लगा होता है। पिक्चर्स में ये अमेजिंग दिखता है। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं कुछ एस्थेटिक अपनी बर्थडे फ़ोटोज़ जो है वो ले लूं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आप मैच कर सकते हैं अपने एस्थेटिक्स को, क्लीन, नाइस, अमेजिंग लुक आएगा, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आएंगी। एंड अगर आप ऐसी फोटोज ले रहे हो तो मुझे टैग कर देना यार इंस्टाग्राम पे। फिलहाल फैशन की बातचीत के बाद जो है एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो सुन लेते हैं, उसके बाद जरा आपको बताऊंगी कि यार दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हटके जो खबरें हैं वो आ रही हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय करके आओ, तेरा हो जाऊं। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:10. दैट इज 12:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: मैं हूं अनिल कपूर. रेडियो ओलिव यूविंदास.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: जब आप सूख वागिफ जाते हैं एंड वहां पर गलियों में खो जाते हैं और एक ही गली में बार बार घूमते रहते हैं तो ये गाना जो है आप पे जाता है। गाने का नाम गलियां रिटर्न। आई नो बहुत गंदा जोक था बट इट्स ओके। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत जो है वो हम कर रहे हैं। एंड देखिए कई बार आप अच्छी चीज़ों की आदत लगा देते हैं तो जिन लोगों में वो अच्छी आदतें नहीं हैं उन लोगों से आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये रिसर्च कह रही है। रिसर्च का ये कहना है कि अगर आप जिम जाते हैं और बहुत ही कंसिस्टेंटली जाते हैं कि यार आप रोज़ जिम जा रहे हैं, रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, जो लोग थोड़े कम डिसिप्लिन हैं, उनसे जो है आपको दिक्कत होने लग जाती है। आप उनको जो है रिस्पेक्ट वाली नज़रों से नहीं देख पाते हो। फिर ये क्या बात हुई यार। मतलब मैंने जो है जिम में लोगों को फैट लूज़ करते हुए देखा है, यू नो मसल लूज़ करते हुए देखा है, वेट लूज़ करते हुए देखा है, लेकिन इंटरेस्ट लूज़ करते हुए पहली बार देख रही हूँ। कि आप कह रहे हो कि अगर मैं जिम नहीं करती हूँ एंड मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो अगर जिम करता है तो अगर वो जिम रोज़ कर रहा है तो वो मुझसे बात करना बंद कर सकता है क्यों? कोई बात नहीं गाइस। देखिए वैसे ये जो है थोड़ा प्रैक्टिकल भी है कि अगर आप अच्छी आदतें लगाते हो तो आप कोशिश करते हो कि बाकी लोगों में भी वो अच्छी आदतें आए, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अगर थोड़ी अलग होती है तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे बेटर है कि आप अपने ओपिनियंस अपने तक रखें वरना आपकी दोस्ती अफेक्ट हो सकती है। कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए काम करना, हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, दूसरों को मोटिवेट करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपको जो दोस्त बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे और अचानक से वो आपको कम पसंद क्यों आने लग गए, तो शायद यही वजह है। आपने जिम जाना शुरू किया है एंड वो थोड़े लेस डिसिप्लिन है इसलिए आपको अच्छे नहीं लग रहे। फिलहाल स्कूल से न्यूज़ के बाद जो है एक कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है, बस इसीलिए ये गाना इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

देखिए मरिया का तो नहीं पता, लेकिन आपकी कशिश जो है यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए आ चुकी है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यार, एआई की इतनी बात करी हमने आज कि म्यूजिक जो है वो एआई से बन रहा है और एआई जो है किस तरीके से अलग अलग लोगों को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन लोगों के यू नो रिलेशनशिप के चांसेस को भी एआई रिप्लेस कर रहा है। कितनी सारी खबरें हम सुन चुके हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने ये बताया होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हम भी कितनी बार यहाँ पर बात करते हैं कि लोग जो है वो एआई से अब शादी भी कर रहे हैं। सो एक लड़की ने, ये नई खबर है, एक लड़की ने जो है एआई से शादी करी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने चैट जीपीटी से शादी करने के बाद ये बोल दिया है कि अब कोई भी लड़की अपनी इमोशनल प्रॉब्लम, रोमांटिक प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे यू नो चैट जीपीटी से शेयर नहीं करेगी, अपनी जो बातें वो अपने तक रखो। आई नो इससे जो है दूर रहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब चैट जीपीटी मेरा है। वाओ, नो ओनरशिप नथिंग, बस शादी कर लो अपने साइड से और बोल दो कि भाई ये एआई मेरा है। अब क्या होगा, अब कितने सारे लोग अपना होमवर्क लेके बैठे थे, कितने सारे लोगों का अब ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा, आपने मना कर दिया उनसे बात करने के लिए। यार लड़कियां सोच रही है यार हमें तो मेल लिखना भी नहीं आता है ऑफिस में, हम तो चैट जीपीटी के भरोसे ही आए थे और अब आपने ये कर दिया, क्या करें। सो देखिए, आपके पास अगर ऐसी कोई वियर्ड खबरें आती है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं 3311063 पर। और अगर इंस्टाग्राम पे फन रील्स जो है वो देखना चाहते हैं, फन कॉन्टेंट कंज्यूम करना चाहते हैं एंड कतर की सारी अपडेट्स आपको चाहिए, सो आपको रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है और फॉलो बटन को दबा देना है, सारे आरजेज आपको वहीं पर मिल जाएंगे। सो आकर हमसे भी बातचीत आप वहां पर जारी रख सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना रैप के रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए, जियो बिंदास। थोड़ा

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

सत्य प्रेम की कथा से ये गाना आपने एंजॉय किया। यार मूवीज के नाम आजकल इतने लंबे लंबे होने लग गए हैं कि उनका जो शॉर्ट फॉर्म बनाओ वो भी बहुत लंबा हो जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई थी हम बात कर रहे थे। ओके सो रेडियो ऑलिव पे मैं हूँ आपकी कशिश एंड आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। एंड जी चाचा बाय बाय करके मैं यहाँ से चलती हूँ, अब मैं आऊंगी कल आप लोगों को फिर से एंटरटेन करने एंड आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने, आपको ये याद दिलाने कि सनस्क्रीन लगाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पानी जो है आपको कितनी बार पीना है एंड बॉलीवुड में क्या हो रहा है, फैशन की दुनिया में क्या हो रहा है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कशिश अब हमारा मन कैसे लगेगा, अब हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, रेडियो ऑलिव का इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वहां पर आकर आप हमारा सारा कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ फन और दोहा में कतर में क्या कुछ नया हो रहा है ये भी आपको पता चलता रहेगा क्योंकि सारी अपडेट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाओ अपना फोन जो है उसे ओपन करो, इंस्टाग्राम खोलो, रेडियो ऑलिव QA जो है टाइप करो, आपको दिख जाएगा पेज, वहां फॉलो करो, हम सब आरजेज आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से आओ फॉलो करो और 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर भी आप अपने मैसेजेस जो है वो हमें भेज सकते हैं और हम उन्हें बहुत प्यार से पढ़ते हैं एंड उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सो देरी किस बात की है, जल्दी से आओ मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और बाकी अपनी दुआओं में, अपने ख्यालों में हम सबको याद रखो। एंड फिलहाल जाते जाते आपको जो है एक बहुत ही अमेजिंग गाने के साथ जो है मैं छोड़कर जाऊंगी, पति पत्नी और वो दो का ये ट्रैक है, इसे इंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह। स्टे ट्यून्ड।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ओलिव, नंबर वन।
6: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Olive Music Marathon. एक घंटा, non-stop, back to back गाने.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, ऑलरेडी बांध रखी है तो कसकर बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, किससे खबरें कहानियां सब शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। आप अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए 3311063 पर। मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बताते हुए बोलते हुए स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: Hello listeners, mera naam hai Rajpal Yadav, Rajpal Yadav. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: कौन कहता है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, बहुत चेंजेस आ चुके हैं। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे स्किन केयर की बात जरा कर लेते हैं। और स्किन केयर की बात करते वक्त मैं याद दिला रहा हूँ कि सनस्क्रीन लगाया ना आपने, बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि आजकल लड़के भी स्किन केयर में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। पहले तो बहुत लोग उन्हें शेम करते थे कि अरे ये तो लड़की वाली हरकतें हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मगर बाद में उन्हें पता चला कि नहीं भाई, अच्छी त्वचा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेहत के साथ साथ अच्छी त्वचा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। डेटिंग गेम में भी आजकल उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि अगर एक लड़की देखती है कि यार लड़का स्किन केयर भी करता है, काफ़ी मेंटेन करता है खुद को, तो वो भी थोड़ा सोचती है ना कि हाँ यार ये सही है, मतलब डिसिप्लिन बनता है, अपने पे ध्यान देता है मतलब। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि स्किन केयर की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं, खाने से होती है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जरा यहाँ पे यही बात बताते हुए गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

तो बात हमने ये छेड़ी थी कि कैसे खाना हमारे स्किन केयर को इम्प्रूव कर सकता है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जी। आपने सही सुना, खाना ढंग से खाने से, प्रॉपर खाना खाने से स्किन केयर का गेम भी काफी स्ट्रांग हो सकता है, और इससे रिलेटेड थोड़े प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हो सके तो एक पेन पेंसिल निकाल के रख लीजिए। देखिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्थी फैट, जैसे कि सैल्मन, वॉलनट, एवोकाडो, ये सब ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड करते हैं जो स्किन बैरियर को काफी स्ट्रांग रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जो हमें मिलता है बेल पेपर, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट्स, ये सेल डैमेज से फाइट करते हैं, उसके साथ साथ बॉडी का काफी बढ़िया एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रेडी करते हैं, जो है कोलाजन, जो स्किन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीटा कैरोटीन जो स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स में बहुत मिलता है, बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है ताकि हेल्थी स्किन सेल ग्रोथ हो। और गट स्किन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बनाने के लिए आप योगर्ट या फिर अदर प्रोबायोटिक फूड ले सकते हैं, जिससे इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम होएगा, ब्रेकआउट कम होगा, स्किन हेल्थी रहेगी। तो स्किन केयर की शुरुआत जो है खाने से होती है, प्रोडक्ट्स बाद में आते हैं, तो आप जरूर डाइट को इम्प्रूव कीजिए, प्रोडक्ट्स बाद में यूज कीजिए। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज। ओनली रिचार्ज।
0: ओनली रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ओनली रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने खास चीजों का, खास लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनकी, है ना। और इसलिए अपने कार का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार का ख्याल रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेल्वोलिन AMTC पे जा सकते हैं जो सलवा रोड पर है, जहां पे आपको प्रीमियम क्विक सर्विस मिलेगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं भाई, यहां पे जेन्युइन वेल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स हैं, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं ट्रेंड हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो काफी बढ़िया रहेगा। उसके साथ साथ उनके पास डिजिटल कार पासपोर्ट है। ANPR टेक्नोलॉजी से आपको अपने कार के सारे मेंटेनेंस की हिस्ट्री बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा, वेल्वोलिन AMTC में जाके आप अपने कार का ख्याल रखना शुरू कर सकते हैं। और कुछ डाउट अगर आपको है तो आप सीधा एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो बोलना कि सुदेव भाई ने बोला था रेडियो ऑलिव से कॉल करने के लिए। नंबर नोट कर लीजिए, 7765-5954। फिर से बता देता हूँ, 7765-5954। आज ही आप जा सकते हैं सलवा रोड वेल्वोलिन AMTC में अपने गाड़ी का ख्याल रखने के लिए। और यही बात बताते हुए आपके दिल का ख्याल रखने के लिए गाना यहाँ प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس.
2: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
3: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
2: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
3: कतर जनरल इलेक्ट्रिस सिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन करामा।
4: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
5: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ऑलिव, हमें नंबर वन, हमें लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज,
8: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
9: This hour is brought to you by
10: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
4: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही खास बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, बात ये है कि जब भी हम चलते हैं, अच्छा जूता या फिर अच्छा फुटवेयर हमने नहीं पहना होता तो वो हमारे पैर पे ना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। पैर दर्द करना या फिर फर्दर इश्यूज की ओर ले जाना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मगर नाइकी ने एक डिसीजन लिया है, वो एक ऐसा स्लाइड ड्रॉप करने वाला है जो आपके पैरों को मसाज करेगा। सोच के देखिए, चलते चलते मसाज मिल रहा है, मजा आ जाएगा। अब चलते चलते मसाज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर काफी कूल लुकिंग एक स्लाइड है यार ये, मतलब देख के मजा आ रहा है। उसके साथ साथ मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ उसका। नाइकी और हाइपर आइस ने मिलकर जो है एक स्लाइड रिलीज करने का सोचा है जो $250 का, और ये एक्चुअली हीट दे सकता है हमारे पैर को और मसाज कर सकता है, ठीक है। इसका नाम है दी एयर जूम हाइपर स्लाइड, और ये सितंबर 29 को रिलीज होगा, शायद ऐसे ही बोला जा रहा है, ब्लैक और बेज कलर में, ठीक है। और इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हीटिंग जो है 117 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है, और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है हमारे फीट को रिलैक्स करने के लिए आफ्टर लॉन्ग डेज ऑफ वर्कआउट्स। तो यानी कि चलते चलते मसाज मिल ही सकता है शायद, या फिर बैठे बैठे भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई गल नहीं, मसाज मिल रहा भाई वो ज्यादा मैटर करता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

इंटरेस्टिंग बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई एम गोइंग टू मेक एन ऑफर दैट यू कैनॉट रिफ्यूज। एक्चुअली मैं नहीं, कतर एयरवेज कुछ ऑफर्स लेकर आया है जो हम बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 20% सेविंग्स मिल सकते हैं प्रीमियम कैबिन्स में, 25% सेविंग्स मिल सकते हैं इकोनॉमी क्लास में, और 50% बोनस एवियोस मिल सकता है आपको हर कैबिन में फॉर प्रिविलेज क्लब मेंबर्स। और ये ऑफर्स जो है 30th July 2026 के बुकिंग तक अवेलेबल है, उसके साथ साथ 10th December 2026 तक के ट्रैवल डेट तक। और ऑब्वियसली थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें जरूर रहेंगे, और मैं यही बोलूंगा आपसे कि अगर ट्रैवल करना चाहते हैं आप तो ये बिल्कुल सही टाइम है। कतर एयरवेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर्स लेकर आया है, तो इसका लुत्फ उठाइए, ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूंगा। चाइना प्लान कर रहा है कि गाड़ियों में जो बटन्स हैं वो वापस लेकर आए। जी हाँ, सही सुना आपने, टेस्ला के एस मॉडल के बाद ऑलमोस्ट हर गाड़ी जो है मेजर फंक्शनैलिटीज को टच स्क्रीन में इंक्लूड कर चुकी है। मगर अब चाइनीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ये सोच रही है, नहीं भाई, हमें एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शंस कुछ हैं, जैसे कि सिग्नल्स, विंडशील्ड वाइपर्स, विंडो कंट्रोल्स, गियर सिलेक्शन, डीफॉगिंग, ये सब जो है टच स्क्रीन में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट बटन्स की तरह अगर सामने होंगे तो एकदम से ड्राइवर का ध्यान बिना हटाए ही ये हम फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री भी यही सोच रही है, यार हमें जो है एक बैलेंस चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यूजफुलनेस के साथ साथ। मुझे तो लगता है कि भाई जो फ्यूचर डैशबोर्ड है वो शायद बटन और स्क्रीन के बीच का कोई चॉइस नहीं होगा, मे बी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो अपना अपना काम करेगा। फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि भाई ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने खास लोगों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके उस कंपेनियन का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए सुबह शाम दौड़ता रहता है, वो है आपका कार। गाड़ी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग अपने कार का केयर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं। और अगर आप अपने कार को और प्रीमियम केयर देना चाहते हैं, और अच्छा केयर देना चाहते हैं, तो वैल्वोलिन AMTC पे आप जा सकते हैं सलवा रोड में। वहाँ जाके आप अपने कार को जो प्रीमियम केयर आपका कार डिजर्व करता है वो ज़रूर दे सकते हैं। और मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, वो नंबर आप नोट कीजिए और आज ही कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करते हुए बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765-5954, नोट कर लीजिए 7765-5954। इस नंबर पे आप आज ही कॉल कर सकते हैं, आज ही विजिट कर सकते हैं आप वैल्वोलिन AMTC, जहां पे आपको 100% जेन्युइन वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स मिलेंगे, ओरिजिनल पार्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपके कार का मेंटेनेंस टॉप नॉच रहे। उसके साथ साथ वहां पे डिजिटल कार पासपोर्ट है जिससे ANPR टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके कार के पूरे मेंटेनेंस की हिस्ट्री मेंटेन की जा सकती है। तो मैं यही बोलूंगा कि इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए। और एक और कैच है, अगर आप वहां जाके ऑयल चेंज करवाते हैं तो एक वैल्वोलिन मर्चेंडाइज आपको मिल सकता है। तो यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

भाई एक बंदे ने एक ऐसा फिटनेस ऐप बनाया है जो सही में आज तक के सारे फिटनेस ऐप को रीथिंक करने में मजबूर कर रहा है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो इस ऐप ने जो है एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज किया है जो मुझे लगता है हर इंसान इस ऐप को यूज करने के बाद सही में फिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने पैसा इंक्लूड कर दिया। अब आप सोचोगे कि भाई हर ऐप जो है पैसा इंक्लूड करता है तो क्या चेंज है इसमें? ध्यान से सुनिए। तो बेसिकली आप बेट करते हैं कि अगर आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और ये बेट लगाते लगाते ऐसे चैलेंजेस आप ले सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने फिटनेस जर्नी को और चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अपने हाथ से पैसे जाते हुए तो हम देख नहीं सकते, और हम लोग इतनी आसानी से जेब ढीली करते भी नहीं है, तो पैसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम 10,000 स्टेप चलने हैं चल लेंगे, और हमें 1 घंटा वर्कआउट करना कर लेंगे, मगर पैसे हाथ से नहीं जा सकते भाई। मोस्ट जो फिटनेस ऐप्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रीक और नोटिफिकेशन के थ्रू, मगर रियलिटी तो किसी ने सोची नहीं, किसी ने ये देखा ही नहीं कि भाई लोगों के वीकनेस की ओर हम जरा फोकस करते तो शायद और फिट होने के बारे में लोग सोच ले। बट एनीवे मुझे थॉट काफ़ी अच्छा लगा, और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बंदा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: ऑल इन लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे बहुत जल्दी निकल गए, पता भी नहीं चला, मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को 2 बजे, इसी सीट में आऊंगा आपके साथ में गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो यहाँ पे टाटा बबाई करते हुए मैं जरा निकलता हूँ, और याद दिलाना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और ऑलिव रिचार्ज में मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 5:05 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੋੜਾ ਟਾਈਮ ਯਾਰ
1: ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ Brought to you by Dana Dal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
0: My kids, Sonyo, kidda lagi aal chal sat sri akaal Simran Kaur aaj ki zabardast evenings jo hai wo shuru ho chuka hai ki dasa.
2: O tere naal prita laiya ve mahi tenu khabar nahi.
0: Ab ye jo 24 ghante aapne mere bagair bitaye hain yaad aayi ki nahi aayi? तो खुद ही फील ले लेती हूँ कि आप लोग याद कर रहे होंगे यार, पर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपको मिस करती हूँ यार। अब अपने सारे इमोशंस को इकट्ठे करिए और ये चार घंटे में अपने सारे इमोशंस जो है वो लगा दीजिए, सिर्फ प्यार वाले इमोशन यूज करिएगा। आप लोगों के गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजिए और ये भी बताइए कि आज का आपका दिन जो था वो कैसा रहा, कैसा बीता आपका आज का दिन। 3311063 पर मैसेजेस भेजिए। आपकी हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी को आप सुन रहे हैं तो मुस्कुराना मत भूलिएगा।

0: ओ पाट दे तुड़ा।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
3: लुलु, where the world comes to shop.
4: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
5: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
4: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
5: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
6: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
7: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: नहीं भी याद आ रही थी तो ये गाना आपको ये फील करा देते थे कि यार कोई तो है जिसकी जोर जोर से याद आ रही है। बेबी प्यार छोड़, बात है, बातें नहीं करो, काम करो यार अभी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आपने मुझे गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दिए हैं। और आप लोगों की परवाह है तेरी याद याद में, अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए कि आपका ध्यान ही नहीं रहा कि यार ड्राइव कर रहे हो यार सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा सियाने हैं, रूल मत तोड़िएगा, 500 रियाल का फाइन आ जाएगा। अगर दूसरा बंदा भी आपके साथ जो बैठा उसने भी बेल्ट नहीं पहनी है, 500 रियाल और आ जाएगा। तो ये वाले पैसे जो है, जो आप अपनी यू नो खून पसीने से कमा रहे हैं, वो फाइन में मत दीजिएगा। सारे रूल्स को फॉलो करेगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए। और ड्राइव स्लोली यार, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

जी दिला दो घर चंडीगढ़ में। 5:33 फिलहाल तो चंडीगढ़ जाने का मन हो रहा, पंजाब जाने का। सुने हो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल। महफिल में आग लगने वाली है।

कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पूरा कह लेना। और यार ये क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ लग रहा। रैपर बादशाह, आपको पता है ये भी कुछ ही टाइम पहले उनकी शादी हुई थी, कि एक्चुअली मुझे नहीं पता था जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, 2020 में उनकी पहले एक शादी हुई थी जैस्मिन के साथ। सो उसके बाद अभी रिसेंटली जो था उनकी शादी हुई थी किनके साथ, ईशा रिकी के साथ। तो ज़्यादा इसकी कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं आई थी, ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन पिछले दो बार जो है उनकी जो रिसेंट वाइफ है ईशा रिकी ने कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो डाली हैं, और वो स्टेटमेंट्स जो हैं मतलब जो वो अपलोड कर रही हैं अपना स्टेटस है ना, वो इमोशनल और क्रिप्टिक थोड़ी सी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं। बट या इट्स टू सून टू से, बट लग ही रहा है कि ऐसा कोई तो दिक्कत जो है वो चल रही है, इसीलिए वो आके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं। नहीं हो रही है भाई आजकल रिलेशनशिप्स, किसी से निभ नहीं रही हैं। सबका अपना अपना यार, किसी को गलत बोलना ये सही नहीं होगा।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Iske स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

खींच गई फोटो। और आप अपनी गाड़ी के साथ जब फोटो खींचते हो तो कितनी कूल लगती है ना, तो गाड़ी का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी के साथ मतलब आपके साथ साथ गाड़ी जो है वो भी कूल रहे, और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस जो है वो करवाते रहिए, और अपनी कार को प्रीमियम केयर दीजिए। वेल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस जो है आपको सलवा रोड पे मिल जाएगी, एंड अगर आप यू नो ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको एक स्पेशल फ्री गिफ्ट जो है इनकी तरफ से ज़रूर मिलने वाला है। इनके जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम फिल्टर्स हैं, और सबसे बढ़िया वाली बात है ANPR पावर्ड डिजिटल कार पासपोर्ट है, जिसमें आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो एक ही जगह सेव हो जाएगी। बट उससे पहले अपनी गाड़ी को पेम्पर करवाने से पहले, कॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं कि नाम याद रखिएगा, जब आप कॉल करें, इनकी शोरूम विजिट करें या फिर कॉल करें, कि सिमरन कौर ने बताया था जरूर बता दीजिएगा। नंबर मैं आपको दे रही हूं 7765 5954, एक बार फिर से 7765 5954 जरूर कर लीजिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कौर, कहते रहिए जियो। बिंदास आने वाले गानों में से फिर अगला गाना

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: ओए होए के 4 मिनट 7 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवा के अलखोल।

0: देखो यार लाइफ में एक चीज याद रखो,
1: बेफिक्र अभी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है।
0: फिक्र करते रहोगे, फिक्र से कभी किसी का कुछ बना नहीं है दोस्त।
1: मौसम
0: हाँ जी सुना देते हैं मौसम की अपडेट। 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 41 डिग्री सेल्सियस एंड अभी के लिए ह्यूमिडिटी 54% एंड विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। मौसम के हाल तुसी अपना हाल दसना चाहते हैं तो दसो 3311063 मैनू मैसेज कर दो फटाफट देना।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Radio Olive, I'm the number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: फीलिंग स्ट्रांग,
1: बिल्कुल फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है ब्रेकअप वालों की। ये बॉलीवुड ये जो दिखाता है कि यार ब्रेकअप जो है वो ऐसा बुरा नहीं होता है यार। 6:17 16:36 स्टूडियो की घड़ी पे हो

0: नंबर गाने जो है आप लोगों के लिए चल रहे हैं, और एक नंबर ये क्या चल रहा है यार, बहुत तो वायरल में बता दियो।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: गर्मा गर्म फ्लेकी कोसों की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्वाद लगते हैं कॉफी के साथ, राइट। लेकिन आजकल जो है वो कोसों के साथ बहुत सारे लोग एक अलग लेवल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो कोसों के अंदर वो एक बड़ी सी आइसक्रीम डाल के खा रहे हैं। सो पूरी एक आइसक्रीम होती है ना, वो कोसों के अंदर रख देंगे और उसके बाद बोलते हैं भाई साहब इट्स यम। मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो करके देखिएगा, क्योंकि इट्स ट्रेंडिंग और लोग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। बट फॉर मी, मैं कोसों को ऐसे ही खाऊंगी यार, मतलब कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म ऐसे डुबो डुबो गए, ओए बड़ा मजा आ जाता है यार।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

हाँ जी, शायदी के साइड इफेक्ट से हम ये गाना सुन रहे थे। शादी का शायदी हो गया था यार, हो जाती है जबान फिसल जाती है। ग्रीन टी भी पी के भी मेरी जबान जो है वो फिसल रही है। 6:34:12 स्टूडियो की घड़ी पे एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चलाऊंगी। ये गाना मेरे दिल के बेहद करीब है, जो कि आज आप ऑलिव रिवाइंड में सुनने वाले हैं। एक बात याद रखना, जी। एंड अब टाइम है कि आपको कुछ सिखा दूं। एक वर्ड है स्ले। वो बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छा लग रहा होता है, अमेजिंग लग रहा होता है, बोलते हैं तुम स्ले कर रही हो, है ना। सो अगर ये वर्ड वैसे जेंजी लिंगो में है जो यूज किया जाता है, बट अगर इसकी हिंदी कर दे मतलब लाइक तुम स्ले कर रही हो, लाइक तुम हत्या कर रही हो। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड्स को जब आप हिंदी में लेके आते हो ना, बहुत फनी हो जाते हैं वो।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है. रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में.
0: लूनू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया, बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
0: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सिक्स फीट वन स्टूडियो की घड़ी पहुंच गई सिमरन कौर आपकी ज्यादा। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। अगले घंटे नेम गेम हम जरूर खेलने वाले हैं। आप लोगों से प्यार है इसीलिए जो चीज मुझे पता लगती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ट्रैवल का प्लान अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई इन आने वाले महीनों में आप ट्रैवल करने वाले हैं और कतर एयरवेज के थ्रू आप करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया वाली ऑफर्स हैं आपके लिए। समर ऑफर्स हैं जो कि आपका पैसा बचा सकती हैं, मतलब बढ़िया वाली है। सो 25% अप टू 25% की सेविंग आप यू नो इकोनॉमी क्लास पे कर सकते हैं। प्रीमियम कैबिन्स पर आप 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। अगर आप प्रिविलेज क्लब मेंबर हैं तो 50% बोनस एवियोस भी आपको मिल रहे हैं। सो ये ऑफर जो है वो 30 जुलाई तक आप बुक कर लीजिएगा। ट्रैवल आपका 10 दिसंबर तक का हो सकता है, वो कोई टेंशन नहीं है, बट टाइम रहते 30 जुलाई तक आप टिकट जो है वो बुक कर लीजिए। और कतर एयरवेज की और भी लेटेस्ट ऑफर्स जो है ना, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं ऑफ कोर्स।

0: cars in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joyalu Cars, world's favorite jeweler.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

हाँ जी मिठिए हर फिल्म के पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। सड़क फिल्म के बारे में बात करें, अनऑफिशियल रीमेक था एक हॉलीवुड की फिल्म फ्लिक टैक्सी ड्राइवर, जो कि 1975 में आई थी। जो इस फिल्म में महारानी जो कैरेक्टर था ना, वो महेश भट्ट को संजय दत्त ने ही सजेस्ट किया था। बट इस फिल्म की ओरिजिनल चॉइस संजय दत्त नहीं थे, जैकी श्रॉफ थे। और क्योंकि जैकी श्रॉफ उस टाइम पे जो थे यू नो राम लखन, परिंदा एंड त्रिदेव, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। और मतलब अगर इस फिल्म के बारे के गाने में बात करें, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, वो मनोहर दास की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि रेगुलर प्लेबैक सिंगर थे जैकी श्रॉफ के लिए। सो या इस फिल्म से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें करेंगे बेबी। और ये गाना माय गॉड कितनी देर बाद सुना है मैंने, आप भी सुनिए और बताइए याद आया आपको ये गाना। जॉन अब्राहम की फिल्म आशाएं से गाना मेरा जीना है क्या, वाओ।

बात कर रहे हैं सड़क फिल्म के बारे में, कुछ ऐसी चीजें आपको बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता है। सड़क फिल्म का जो सीक्वल था उसके 27 साल बाद जो उन्होंने 2018 में जो था वो रिवील किया कि हम इसका सीक्वल जो है बनाने वाले हैं। महेश भट्ट का जब 70th बर्थडे था, उनकी बेटी बेटियां जो थी पूजा भट्ट एंड आलिया भट्ट ने। और बात करें इस फिल्म की, देवानंद सर की फिल्म 100 करोड़ एंड महेश भट्ट की सड़क एक ही दिन पे रिलीज हुई थी और दोनों ने बहुत ही बढ़िया बिजनेस जो था वो किया था। और यू नो बात करें संजय दत्त की, ये सेकंड बिगेस्ट हिट थी यू नो आफ्टर साजन एंड ये टोटली अनएक्सपेक्टेड थी कि ये फिल्म इतना बढ़िया वाला काम कर जाएगा। सबसे बुरा जो है वो इस फिल्म में नादिरा जी के साथ हुआ। नादिरा जी को पूरी फिल्म के लिए शूट किया गया बट फिल्म के रिलीज के टाइम पे उनके सारे सीन्स को काट दिया गया था। भाई साहब 7:23 18 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। इस घंटे नेम गेम भी खेलेंगे, आप लोगों के नाम भी लेने हैं एंड रियलिटी चेक भी होगा। नजर

0: रेडियो ऑलिव करके दे रहे हो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: एसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: कहीं भी लिखा था कहते कि जब अकेला रहना शुरू किया तो पता लगा कि दुख की असली वजह जो है ना वो तन्हाई नहीं है, लोग हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि जो है ना अकेला रहना बहुत ज़्यादा सैड है, अकेला रहना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये अकेला रहना आपको सुकून देता है, क्योंकि वो जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं वो आपको सुकून नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अकेलापन आपको सुकून देता है। अकेलापन भी, अकेले रहना भी दो तरह का होता है। एक आप बाई चॉइस जो है अकेले रहते हो उसको अकेलापन नहीं बोलते हैं। एक होता है कि जब आप किसी के साथ रहना चाहते हो बट कोई इंसान है नहीं, वो थोड़ा सा दुखदाई अकेलापन जो है वो होता है। बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल मुझे लगता नहीं है कि किसी को किसी की कंपनी पसंद है। मतलब ठीक है लोग जाते हैं बाहर हैंग आउट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको अपना अकेलापन चाहिए।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अपना नाम टाइप करके भेज दो। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप मुझे हर रोज सुनते हो चार घंटे अपने निकाल के। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो आप अभी के अभी नाम लिख के मुझे अपना बता दीजिए, क्योंकि मुझे आपका नाम कैसे पता लगेगा। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता देती हूँ, जिसपे लिख के आप अपना नाम मुझे भेज सकते हैं। सो मेरा नंबर है 3311106 3। एक बार फिर से 3311106 3। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपने मुझे अपना नाम। ओके चलिए नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। डेजी, आसमा, साहब, अकरम, वाजिद शेख, रवि, दीपक, यमथापा, जुनैद, दानिश शेख, थैंक यू सो मच, फरा, चांद, दीदार जी, लतीफुल्ला जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, फातिमा यूसुफ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिख के भेजिए 3311106 3 पे व्हाट्सएप करिए। निर्मल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। खिजर हयात खान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एम, ऑलरेडी आपका नाम मैं ले चुकी हूँ। गौस जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शाबाश जी, थैंक यू सो मच। लोगो मेरा, दोस्तों मेरा हाल मत पूछो, सिर्फ नाम लिखो, अभी सिर्फ नाम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यासीन अबासी जी, थैंक यू सो मच। नसीम जी, थैंक यू सो मच। आशीष जी, थैंक यू सो मच। इंतशाम अबासी जी, थैंक यू सो मच। राम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों, मजाक नहीं चाहिए मुझे, अपना नाम लिख दो यार 3311106 3 पर। दीदार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पठान साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाजिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। नसीम जी, थैंक यू सो मच। शेख मकसूद जी, थैंक यू सो मच। शेख मसूद जी, सॉरी। मोहम्मद कासिम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों को मैंने नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं बिल्कुल, और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दीजिए।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बवाल से बहुत ही खूबसूरत गाना हम सुन रहे थे लक्ष्य कपूर की आवाज में इन सुवर्णा। 8:19 स्टूडियो की घड़ी में, ठीक हो? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।

0: और अब आपका नाम मुझे जानना है जवाब के साथ. खेलेंगे हम
1: रेडियो ऑलिव पर.
0: बहुत बढ़िया. चलो मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुना रही हूँ. अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, फिर मत कहिएगा कि यार पता नहीं लगा. तो जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप 3-4 बार सुन सकते हैं, फिर आपको पता हो सकता है कि गाना कौन सा. वैसे आपको पता लग ही जाएगा. आपको पता लग गया है तो लिखिएगा मत, वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ. हे सिमरन, अपना नाम बताइए, गा के बताइए या बोल के बताइए, जवाब दे दीजिए और भेज दीजिए 3311063 पर. एक बार वापस से. होगा, ज्यादा सुर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बस आप मुझे बता दो कौन सा गाना है. 3311063 पर
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
4: Awesome.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: साहब पूरा जोर लगा दिया हमेशपा जी ने। जी मैं जी सुनियो कि सत्याकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल और हम खेल रहे थे और उसका जवाब जो है वो आप लोग देंगे
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: आज सॉन्ग नहीं गजल हो गई है। आप लोगों के जवाब सुनते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
3: सिमरन, कैसी हैं आप?
0: बहुत बढ़िया दोस्त
3: जी। ये वाला सॉन्ग है, होश वालों को खबर क्या,
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
3: बेहुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: गुड इवनिंग, जॉन हियर।
0: हाय जॉन।
4: द सॉन्ग दैट यू प्लेड वाज होश वालों को खबर क्या फ्रॉम द मूवी सरफरोश, संग बाय द लेट एंड ग्रेट जगजीत सिंह जी। सो दैट्स द सॉन्ग। आई डोंट वांट टू सिंग बिकॉज़ आई एम जस्ट गेटिंग इन द कार गोइंग बैक होम, सो दैट्स द सॉन्ग।
0: हाउ स्वीट, थैंक
4: यू। प्लीज डू प्ले इट।
0: Yes, of course. जी जी जी, थैंक यू सो मच।
5: हे सिमरन,
0: हाय।
5: अभी हाँ बात कर रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल आपने प्ले की जगजीत सिंह की आवाज में। ये तो सिर्फ उन्हीं की आवाज में अच्छी लगती है, बट आई विल स्टिल ट्राई। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
0: हाय हाय हाय।
5: And it goes on, बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको आप
0: ओरिजिनली
5: सुनाएं तो
0: मजा
5: आएगा।
0: लो जी, बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे आप सबकी रिक्वेस्ट पे। ये भी मुझे भी बहुत पसंद है यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्टी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

घंटे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। अपना ध्यान रखिएगा, ओवरथिंकिंग मत करिएगा, खांदे पिंदे रहो, ऐश करते रहो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाइएगा। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

रेडियो ऑल एट 106.3 एफएम. दिस इज बी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो आज रात एक कहानी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की नहीं बल्कि एक इंसान के इमोशंस की है. इट वाज 1985 अमेरिका. दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी विच वॉज कॉम्पिटिटर. अब भाई सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे और टेस्ट सब मतलब अच्छा ही लेकर आ रहे थे. लोग ब्लाइंड टेस्ट में सबसे ज़्यादा उसे पसंद कर रहे थे दूसरे ब्रांड को जो कॉम्पिटिटर ब्रांड था. तो अब क्या हुआ कि अगर टेस्ट ही प्रॉब्लम है तो रेसिपी ही बदल देते हैं. जो पुराना ब्रांड था उसने लॉन्च किया नया यू नो टेस्ट, नई रेसिपी. कंपनी को पूरा यकीन था कि लोग इसे पसंद करेंगे. हज़ारों टेस्ट जो थे वो किए गए, लोगों से करवाए गए और टेस्ट भी पास हुए. नंबर्स भी उनका काफ़ी अच्छा था. लेकिन जो हुआ उसके लिए अब कोई रेडी नहीं था. लोगों ने बॉटल्स वापस भेजनी शुरू कर दी. न्यूज़पेपर ऑफिसेज में लेटर्स आने लगे. कुछ लोग तो कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठ ही गए कि नहीं भाई हमें पुरानी वाली रेसिपी की ड्रिंक चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं एंड अपना बचपन आप उसमें जीते हो. यू नो फैमिली पिकनिक, समर वेकेशंस, क्रिकेट मैचेस, कॉलेज की पहली आउटिंग और हर सिप के साथ एक याद जुड़ी होती है. सो फिर समझ आया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, बस लोग नई रेसिपीज ट्राई कर रहे थे. कुछ महीनों बाद कंपनी को अपनी पुरानी रेसिपी वापस लेकर आनी पड़ी जिसे नाम दिया कोका कोला क्लासिक. आज भी बिजनेस स्कूल्स में ये स्टोरी पढ़ाई जाती है. इवन जब आप MBA के लिए जाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इसकी कहानी पढ़ाई जाती है. एक सिंपल सा लेसन, डेटा आपको नंबर्स बता सकता है लेकिन दिल की वैल्यू स्प्रेडशीट में कभी नहीं आती. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका टेस्ट जो है वो शायद नॉर्मल हो लेकिन उससे जुड़ी यादें आपकी दुनिया की सबसे खास चीज़ आपको बना देती है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. ऐसी किस्से कहानियों के साथ आज हम खूब सारी चीज़ें लेकर आए हैं. सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. ये है मिडनाइट लाउंज.

यार कभी कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपका कोई फेवरेट कप टूट गया हो और बचपन की कोई प्यारी सी चीज़ टूट जाए जिसे टूटने के बाद हम अक्सर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन जापान में टूटी हुई चीज़ों को फेंकना ना बहुत ही गलत माना जाता है। उन्हें एक नई जिंदगी वहाँ पर दी जाती है, इसी को आर्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है किंत्सुजी। सदियों पुरानी यह जापनीज टेक्निक है जो कहती है कि जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसके क्रैक्स को छुपाया नहीं जाता, उन दरारों को गोल्ड या सिल्वर पाउडर से भरा जाता है। सोचिए जिस जगह टूट फूट हुई थी उसी जगह को सोना भर दिया जाता है, और अगर उसके बाद वो बर्तन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और लोग उसके बारे में पूछते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, हम अपनी ज़िंदगी का एक क्रैक छुपाना चाहते हैं और छुपाते रहते हैं अपने फेलियर्स, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपनी गलतियाँ। लेकिन किंत्सुजी जो है वो कहता है कि यार ये तो हमारी असली पहचान है, ये निशान कमज़ोरी नहीं तुम्हारी कहानी है। शायद इसीलिए ये लोग हमें परफेक्ट होने की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि इसीलिए याद रहते हैं क्योंकि उन्होंने टूट कर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक किंत्सुजी ज़रूर होता है, बस फर्क ये है कि किसी का क्रैक दिख जाता है और किसी के दिल के अंदर छुप जाता है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक क्रैक गोल्ड से भर सकते तो वो कौन सा पल होता जिसे आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना अचानक रेडियो पर प्ले हो जाए और बिना किसी वजह के पूरा आपको ऐसे लगे कि यार कुछ चेंज हो रहा है, कुछ गूज़बम्स आ जाए? ये किसी फिल्म का एक डायलॉग है या फिर किसी की आवाज़, मतलब कभी आपने सुना और एकदम से गूज़बम्स आ गए और ऐसी अजीब सी लहर दिल से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ जाती है। साइंस कहता है कि इस फीलिंग को फ्रीशन कहा जाता है, FRISSON। ठीक है, जब कोई चीज़ हमें इमोशनली डीपली टच करती है, हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और इसी रिएक्शन की वजह से हमारी स्किन पर छोटे छोटे गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साइंस पर प्रोसेस जो मतलब सिर्फ प्रोसेस समझ सकता है, फीलिंग्स को नहीं, क्योंकि गूज़बम्स ना सिर्फ म्यूज़िक की वजह से नहीं आते, कभी किसी पुरानी याद से भी आ जाते हैं, कभी किसी की आवाज़ से आ जाते हैं, कभी किसी के कॉल से आ जाते हैं और कभी किसी पुराने स्कूल के गेट को देख कर आ जाते हैं। सो कभी किसी एक नाम से भी आपको ऐसे गूज़बम्स फील हुए होंगे। शायद कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उन्हें लफ्ज़ों में मतलब पढ़ा ही नहीं जा सकता, बस शरीर खुद जवाब दे देता है कि और ये तो कुछ नया है और ये गूज़बम्स से ही आता है। सो कौन सा ऐसा गाना है जो हर बार सुनते ही आपको ना गूज़बम्स आ जाते हैं और आपको लगता है यार ये गाना तो मतलब कई सारी चीज़ें याद दिलाता है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल एफ, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

You know, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, लेट हुआ तो फाइन लगेगा, ठीक है, स्कूल हो, ऑफिस हो, लाइब्रेरी हो. लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ने एक दिन सोचा कि क्या होगा अगर हम फाइन मतलब हटा ही दें. शुरुआत में सबको लगा कोई कभी बुक वापस ही नहीं करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा. लोग ज़्यादा बुक्स लेकर आने लगे, बच्चे बिना डरे लाइब्रेरी आने लगे, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने बुक्स पहले से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिटर्न करना शुरू कर दी. एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को सिखा दिया कि हर इंसान रूल्स से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से बदलता है. कभी कभी ट्रस्ट पनिशमेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और शायद रिलेशनशिप भी इसी तरह काम करते हैं. जहाँ भरोसा होता है वहाँ रिमाइंडर्स की ज़रूरत कम पड़ती है. अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, रूल्स के साथ आप ज़्यादा अच्छे से चलते हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? लोग डर की वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं या भरोसे की वजह से? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिड नाइट लाउंज. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर सुपरहिट गाने. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. आज के जमाने में ना हर फिल्म हमें एंटरटेन करना चाहती है. हर दूसरे मिनट एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्विस्ट. लेकिन जापान का एक एनिमेशन स्टूडियो है, स्टूडियो घिबली. भाई इसका नाम सुनते ही पूरा बचपन याद आ जाता है. और उसकी एक अजीब सी आदत है, वो साइलेंस से डरता है. बल्कि साइलेंस से डरता ही नहीं है एक्चुअली. उनकी फिल्म्स में कई बार हीरो सिर्फ हवा को देखता रहता है. बारिश गिरती रहती है, ट्रेन चलती रहती है और कुछ देर तक कोई डायलॉग्स ही नहीं होते. लेकिन वही साइलेंस स्टोरी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा बन जाता है. लाइफ भी शायद ऐसी ही है, हर खामोशी बोरिंग नहीं होती. कुछ खामोशियाँ दिल को रिपेयर करती हैं. और इसीलिए घिबली की फिल्म्स देखकर लगता है कि जैसे किसी ने कहानी नहीं सुकून सुना दिया है. अगर आपने अभी भी घिबली स्टूडियो की कोई भी मूवी नहीं देखी है, कोई एनिमेटेड मूवी, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. आपको साइलेंस पसंद है तो भी और नहीं पसंद है तो भी, ये हमेशा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलना चाहिए, आई बिलीव. तो समटाइम ट्राई समथिंग न्यू, यू नो. सो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज़ मी मुस्कान विद यू. और नंबर है 3311106. Stay tuned, Jio. Bindaas.

सोचिए एक ऐसा कमरा जहां इतनी खामोशी हो कि आप अपनी हार्टबीट सुन सकें। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, सच है। दुनिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहां लगभग हर बाहर की आवाज़ को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। मतलब जो लोग वहां कुछ देर बैठते हैं वो कहते हैं कि पहले उन्हें अपनी सांसें सुनाई देती थी। इसे एक चेंबर्स के नाम से जाना जाता है। फिर उन्हें उनकी हार्टबीट सुनाई देती है और कुछ लोग तो अपने जॉइंट्स की हल्की सी मूवमेंट्स भी महसूस करने लग जाते हैं। सो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, हर रोज़ दुनिया का शोर सुनते सुनते हम बड़े होते हैं लेकिन अपनी आवाज़ सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। शायद इसीलिए हम घर में जाते हैं, थोड़ा सा सुकून ढूंढते हैं लेकिन वहाँ जाकर भी आजकल तो फ़ोन्स और टेलीविजन्स मिल जाते हैं। कभी कभी ज़िंदगी को जवाब देने के लिए खामोशी की ज़रूरत होती है। सो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास टाइम है और बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक और बिना किसी आवाज़ के आपको कुछ देर मिल जाए तो आप उस खामोशी को इंजॉय कर पाएंगे या फिर आपको लगेगा यार फटाफट से रेडियो ट्यून इन करो या फ़ोन चलाओ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान 3311063। बाय द वे, मेरे लिए गाने चलना, रेडियो पीछे से चलते रहना इज़ वन ऑफ दी यू नो बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा आसपास है जो आपको सुन रहा है या सुना रहा है कुछ। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है, खामोशी या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। कितना खूबसूरत गाना चल रहा था यार, मतलब ऐसा लग रहा था गाने ही सुनती रहूं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज रात एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए आज ही आप एक लेटर लिखते हो, लेकिन लेटर किसी दोस्त को नहीं, किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं, बल्कि खुद को। लेकिन उस खुद को जो 5 साल के बाद ये लेटर पढ़ेगा, उसमें आप क्या लिखोगे? उम्मीद है तुम खुश होगे, या फिर प्लीज सपने मत छोड़ना। दुनिया भर में हजारों लोग हर साल अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर्स लिखते हैं। मुझे भी ये बात अभी कुछ ही टाइम पहले पता चली, एंड आई वाज लाइक कि यार कैसे। और जब सालों बाद वो एनवेलप खुलते हैं तो लगता है जैसे दो अलग इंसान बात कर रहे हों। मतलब एक जो सपना देख रहा था और एक जिसने उन्हें जी लिया है, या शायद मतलब वो सपने बदल गए हैं। कभी कभी वक्त से अच्छा ना टीचर कोई होता ही नहीं है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने तो अपने लिए लेटर लिखना मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप फ्यूचर वाले खुद को सिर्फ एक लाइन भेज सको या कोई लेटर लिख कर रखना चाहो तो वो क्या होगी? मैं अगर अपनी 5 साल पुरानी पर्सनैलिटी देखती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं तो बिल्कुल भी आज से मैच ही नहीं करती, और आज के 5 साल बाद शायद फिर से कुछ ऐसा ही होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। मैं हूँ मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।

भाई दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि शो खत्म होने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले एक बात पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि सालों बाद अचानक रेडियो पर कोई पुराना गाना प्ले हुआ और उससे पहले आपने कोई आवाज़ सुनी और आप बस मुस्कुरा ही रहे थे? साइंस कहता है कि हमेशा ब्रेन साउंड को इमोशंस के साथ बहुत गहरा कनेक्ट करता है, इसीलिए कभी एक पुरानी रिंगटोन, कभी ट्रेन की सीटी, या फिर कभी बारिश की आवाज़ और कभी रेडियो का एक वो फैमिलियर गाना, सीधा हमेशा किसी और वक्त में आपको लेकर चला जाता है। शायद इसीलिए रेडियो कभी सिर्फ एक मीडियम नहीं रहा, ये लोगों के सफ़र का साथी रहा। नाइट शिफ्ट का दोस्त, हॉस्टल रूम्स की कंपनी, लॉन्ग ड्राइव का हम सफ़र और कई सारे लोगों के लिए घर से दूर होते हुए भी घर की आवाज़। और अगर आज भी हम रात के इस वक्त में साथ हैं तो शायद इसीलिए, क्योंकि कुछ रिश्तों को ना स्क्रीन की

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: ये है मिडनाइट लव,
2: ये है मिडनाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM Jio Bindas

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

Olive, 106.3 FM, Gio Bindaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Schedule. Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Chandni Raate. Chandni.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.